0: ஐ ஹோப் தட் பிளேயர்ஸ் டிட் ப்ரிப்பேர்ட் வெரி வெல் அண்ட் இசி சால் தோடா லிமிட்டட் ஈவெண்ட் ஹமாரா பட் ஃபிர் பி அச்சா ஹோப் தட் தே டூ குட் ஏஷியன் கேம்ஸ்கே பேலே யே தோ காமன்வெல்த் கேம்ஸ் பி ஹே வோ தோ அச்சா ஹே ஜிங்கேஸ் மே போத் அச்சா பர்ஃபார்மன்ஸ் எனிவே டூ மந்த்ஸ் இஸ் தேர் தே வில் டூ பட் அபி தோ கிளாஸ்கோ மே பி ஐ ஆம் எக்ஸ்பெக்டிங் குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹம் தோ பீச்சே நீ ஹே பேலே பி படா காம்படிஷன் தோ இதர் ஆர்கனைஸ் கியா ஹே பட் ஃபிர் பி வாட் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ் வி ஹேவ் டு டூ ஆல் டீம் வில் பி தேர்
1: खेलों के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही भारत ने जश्न मनाने की पहली वजह हासिल कर ली है।
2: 2021 में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली लवलीना बोरोगेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, यानी एक मेडल तो कंफर्म्ड है। उनका सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को टुवालू की तफाकी से होगा।
1: गुरुवार 23 जुलाई को भारत का अभियान लॉन बॉल से शुरू हुआ, वही खेल जिसने बर्मिंघम 2022 में भारतीय खेल इतिहास को एक नई पहचान दी थी। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नेमोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने विमेन फोर्स में 2022 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, तो वहीं पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया था।
2: इस बार लॉन बॉल्स में ये इवेंट नहीं है। 2026 में केवल सिंगल्स यानी एकल वर्ग और पेयर्स यानी युगल वर्ग को जगह मिली है। साथ के साथ इस बार बाहर नेचुरल ग्रास के बजाय ये खेल इंडोर्स यानी अरीना के अंदर कारपेट वाली घास पर खेला जाएगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों ने एक हफ्ता पहले ही वेन्यू पर पहुंच जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी, और बता रहे हैं टीम के सदस्य नवनीत सिंह।
3: It's a different format that the Commonwealth Games hosted for this year in the 2026 Birmingham was a grass green, and this Glasgow is indoor carpet. So we are going a few weeks ahead of the games in Britain for the same to practice on that. So definitely that's going to help us to get us a little better and give us advantage over the new format and play our best with the very high quality players in Glasgow.
1: उसका असर देखने को मिला। विमेन पेयर्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने माल्टा को रोमांचक मुकाबले में हराकर जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर दी है।
2: दोनों टीमों ने एक एक सेट जीता, जिसके बाद टाई ब्रेकर में भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी। इनका अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया और अगले दौर में प्रवेश पा लिया। उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से शुक्रवार 24 जुलाई को होगा। पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय प्रशंसकों को एथलेटिक्स में हैं, जिसमें सबसे आगे नाम है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोट के चलते 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे, और पिछले साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ नीरज ने किसी इवेंट में टॉप 2 में फिनिश नहीं किया। लेकिन इस सीजन में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर दूर अपना भाला फेंक नीरज ने यह दिखाया कि जीत की भूख उनमें अभी भी बरकरार है।
4: नहीं, मैं काफी खुश हूं अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूं अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था, और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
2: हालांकि जैवलिन थ्रो में कॉम्पिटिशन भी उतना ही तीव्र है। नीरज के आर्च राइवल माने जाने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पिछले संस्करण में 90.18 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता था, जिसको बचाने के लिए वो मैदान पर उतरेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे, जिनके नाम 92.62 मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है, वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को तो भूलिएगा मत, जिन्होंने 2022 में दोहा डायमंड लीग में 93.07 मीटर की दूरी तय कर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड स्थापित किया था।
1: दूसरा बड़ा नाम है मुरली श्री शंकर। बर्मिंघम 2022 लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था, लेकिन करियर थ्रेटनिंग इंजरी के चलते इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक्स मिस करना पड़ा था। लेकिन मुरली श्री शंकर ने चोट से उभर कर मजबूत वापसी की और अब ग्लासगो में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है।
2: लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने हाल ही में 2.31 मीटर की ऊंची कूद लगा नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं।
1: साथ ही दिखेंगे तेजस्विन शंकर। हाई जंप में भारत का पहला मेडल 2022

0: इस बर्मिंघम में इन्होंने जिताया था
1: और इस वर्ष ये डेकेथलॉन में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं ट्रिपल जंप में नजरें होंगी एक और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पर, प्रवीण चित्रवेल, जो कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर आए थे, यानी पदक जीतते जीतते रह गए थे। 2018 के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहली बार इन पर नजरें गई थी, जिसके बाद एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ये पदक जीत चुके हैं। क्या इस बार कॉमनवेल्थ में भी ये पदक विजेता बनेंगे? वहीं 100 मीटर की दौड़ में नजरें होंगी 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मॉडर्न फ्लाइंग सिख गुरिंदर वीर सिंह पर।
0: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स की बात चली है तो 200 मीटर में आप अनिमेश कुजूर को देखना मत भूलिएगा। महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर। 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टीपल चेस में नजर आएंगी।
1: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की

0: मत भूलिएगा। महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर। 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टीपल चेस में नजर आएंगी।
1: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की 10000 मीटर और 5000 मीटर वो दोनों इवेंट्स जिसमें वो मौजूदा एशियन चैंपियन हैं अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
0: अब बात प्रियंका गोस्वामी की, पहली भारतीय महिला जिन्होंने रेस वॉक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जितवाया था।
1: पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और कुलदीप कुमार पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी।
0: शॉर्ट पुट में दो बार एशियन गेम्स चैंपियन बन चुके तजिंदर पाल तूर प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आएंगे।
1: ये तो बात रही एथलेटिक्स की, अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का।
0: मिडिल वेट कैटेगरी में लवलीना का मेडल तो सुनिश्चित है ही, पर फेदर वेट कैटेगरी में उम्मीदें जैस्मिन लंबोरिया से भी कुछ कम नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों में ही जैस्मिन के नाम गोल्ड मेडल है और 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है।
1: दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी भी 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।
0: पुरुषों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू कर रहे जादूमणि सिंह भारत का परचम लहराने का ख्वाब लिए रिंग में उतरेंगे। इस साल इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में रजत पदक जीता था और इस प्रदर्शन को दोहराने की पूरी कोशिश रहेगी।
1: पुरुषों की मुक्केबाजी में अंकुश, नरेंद्र, सचिन, सुमित और कपिल पोखरिया से भी अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा है और बता रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह।
2: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
0: अब बात करते हैं स्विमिंग की। 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का स्विमिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे।
1: इनके अलावा नजरें होंगी श्री हरि नटराज पर जिन्होंने 2019 में काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते थे।
0: वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं। कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में इन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
1: अब बात कर लेते हैं आज शुक्रवार 24 जुलाई को होने वाले इवेंट्स की। भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे द अरीना में पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे जिसमें तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह भारत की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
0: फिर दोपहर 3:40 पर शुरू होगा पैरा स्विमिंग मेंस S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल, जहां दिखेंगे रवि वीरा वेंकटा, भवानी कार्तिक और इमाम अली।
1: पुरुषों के 50 मीटर बैकस्ट्रोक में श्री हरि नटराज के प्रदर्शन पर नजर रखिएगा।
0: पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों में मेडल इवेंट्स में अशोक और परमजीत कुमार नजर आएंगे।
1: तो वहीं महिलाओं में पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक लाने की उम्मीद होगी सुमन देवी और जसप्रीत कौर से। रात 10 बजे के करीब इसी इवेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉन बॉल्स में आज जीत हासिल करने वाली पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोहा लेती नजर आएगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से भिड़ेंगे। ये तो बात रही लाइट वेट कैटेगरी की। हैवी वेट कैटेगरी में महिलाओं में कस्तूरी राजमणि और पुरुषों में सुधीर और झंडू कुमार नजर आएंगे।
0: बॉक्सिंग में पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह स्कॉटलैंड के एरन किलन से मुकाबला करते नजर आएंगे रात 11 बजे।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों से लगभग 3000 खिलाड़ी 10 खेलों में 215 स्वर्ण पदकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ पदकों की गिनती होगी, वहां भारत अपने खिलाड़ियों के साहस, संकल्प और सपनों की कहानी भी लिखेगा। हर जीत तिरंगे का मान बढ़ाएगी, हर चुनौती नए विश्वास को जन्म देगी और जब खेलों का ये महा

0: कुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा तब उम्मीद यही होगी कि दुनिया भारत की उपलब्धियों को याद रखे, तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए और राष्ट्रगान की गूंज हर भारतीय के हृदय में गर्व का एक नया इतिहास लिख जाए। आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
2: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे डेली हाइलाइट्स कॉमनवेल्थ गेम्स यानी दैनिक झलकियां कॉमनवेल्थ गेम्स की दर्पण टिरकिया और प्रेरणा शर्मा की आवाज में।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் அன்றாட முக்கிய நிகழ்வுகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: ஆகாஷ்வாணி பிரசன்ட்ஸ் மார்னிங் நியூஸ். குட் மார்னிங், ஐ எம் வி சி பிரமோத். த ஹெட்லைன்ஸ். பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ப்ராமிசஸ் நியூ லோ டு டேக்கிள் பேப்பர் லீக்ஸ். டுடேஸ் கேபினெட் மீட்டிங் டு கம் அவுட் வித் ஸ்ட்ரிக்டர் மெஷர்ஸ் டு டீல் வித் த இஷ்யூ. டெல்லி ஹைகோர்ட் செட்ஸ் அப் ஸ்பெஷல் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட் ஃபார் பேப்பர் லீக் கேசஸ் ஆஃப்டர் பி எம் மோடிஸ் அனவுன்ஸ்மெண்ட். ஆக்டிவிஸ்ட் சோனம் வாங்சுக் என்ஸ் ஹிஸ் ஹண்டர் ஸ்ட்ரைக் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் யூனியன் மினிஸ்டர்ஸ் ஜே பி நட்டா அண்ட் ஜிதேந்திர சிங். இந்தியா டிவெலப்ஸ் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டபிள் டர்போஜெட் இன்ஜின் ஆஃப் 350 கிலோகிராம்ஸ் த்ரஸ்ட் கிளாஸ். India and Romania signed 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा. और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
0: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया.
0: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases related to unfair practices in public examinations. More from our correspondent.
2: The newly designated fast-track court will function at the Ross Avenue Courts under the charge of Judicial Officer Anu Grover Baliga. According to a notification issued by the Delhi High Court, the court will hear cases registered under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, along with the connected offences. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge of the mediation centre at Tees Hazari Courts, has been transferred to the Ross Avenue Courts to head the specially designated court. The initiative is aimed at ensuring expeditious adjudication of cases involving the use of unfair means in public examinations. The notification was issued hours after Prime Minister Narendra Modi announced the center's decision to establish fast-track courts to ensure swift and